0: a manufacturing powerhouse, not only for railway coaches and metro coaches, but also for railway locomotives. Since 2014, India has manufactured 50,000 railway coaches. Let's listen to what he said.
1: जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बीते एक दशक में भारत रेल कोच, मेट्रो कोच बनाने का, रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक भारत ने करीब 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट नहीं बना सकती थी, 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही। करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं, 2.5 लाख।
0: Mr. Trivedi, as we just heard that there are also several railway projects that also have been inaugurated along with other projects. Apart from the freight corridor, how will these railway projects improve the